0: એક ખાસ સૂચના, અમારી સાંજની સભામાં સાંજે 5:45 સાંભળીશું વિકસિત ભારત 2047 પર વિકસિત ભારત સંકલ્પ સંસ્થાન કે સંસ્થાપક પ્રમુખ ઓર આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડોક્ટર મહેશ શર્માની સાથે હિતેશ માવાણીની ભેટ વાર્તા સાંભળીશું સાંજે 5:45.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં નવીન સક્સેના. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे. वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी. यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे. परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे. वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की

0: साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: આ પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી। પ્રસ્તુત છે ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्रीराम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: આ પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી. બરાબર 8 વાગે સાંભળીશું સમાચાર પ્રભાત, જે દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે થશે.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર પ્રભાત કે સાથ મેં મુકેશ કુમાર. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे. सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे. भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया. भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई. FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया. पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे. श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी. यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं. लंदन में कल

0: श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा

0: जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद। सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार

0: भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit,

0: तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: આ પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી। કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ યશુદાસનો સ્વર, ફિલ્મ છે હૈસિયત, સંગીત છે બાપ્પી લહેરી।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: અને શ્રોતા મિત્રો, હવે આપને સંભળાવીએ છીએ સાહિર લુધિયાનવી રચિત આ ગઝલ। ગાયક કલાકાર છે મુન્ની બેગમ।

शायर अहमद फराज, संगीत गुलाम अली, गायिका रूना लैला। हमणां ज आप सांभळी रह्या हता गजल। श्रोता मित्रों, हिंदी गैर फिल्मी गीतों कार्यक्रम आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणीना अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर थी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। खूब सुंदर, खूब सरस संदेश अने गंभीर बात कहती आ पंक्तिओ लखी छे शायर निदा फाजलीए, जेमनी गजल हवे आपने संभळावा जई रही छूं। लता मंगेशकर अने जगजीत सिंहना स्वरमां सांभळीए निदा फाजली रचित आ गजल, जेमां संगीत छे जगजीत सिंहनुं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शायर शून्य पालनपुरी नी केटलीक पंक्तिओ वांची संभळावुं छुं मित्रो, के तने एक माथी बहुनी तमन्ना, बहुथी मने एक जोवानी इच्छा, करे छे तू प्याला मां खाली सुराही, करू छू हूं प्याला सुराही मां खाली। मित्रों, शून्य पालनपुरी ना आ शब्दों अने गजलना स्वरूपे अनेक विचारों व्यक्त थया छे, पण अत्यारे हूँ आपने संभळावा जई रही छू अंकित त्रिवेदी रचित आ गीत, जेमां स्वर छे पार्थिव गोहिल अने साथियोनो।

तो फिर मैं लुटा दूं, किसी की नजर पे ये सारे हो, कहो के ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे, अगर हम ये पूछे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को

0: संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री

0: कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said, he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and

आकाशवाणी अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज। लीजिए सुनते हैं फौजी दोस्तों की सेवा में फिल्मी गानों का कार्यक्रम जय भारती।

जय भारती सुनने वाले सभी फौजी भाइयों और फौजी बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपके हृदय में, मन में, मस्तिष्क में सदैव देश की सेवा, देश की सुरक्षा रहती है, इसीलिए हम आपको प्रणाम, अभिनंदन, नमन करते हैं। हमारी सेना की तीनों पांख, भूमिदल, नौसेना, वायुसेना और बीएसएफ जैसे सभी सेना के दल जो है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे बस कार्यरत रहते हैं और इससे

हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित रहता है, सुरक्षित अपना काम कर सकता है। तो बार बार आपका कृतज्ञतापूर्वक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम कुछ खास ऐसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी आज जन्म तारीख है। लेकिन सबसे पहले देश की बात। जी हाँ, हर भारतीय के दिल का घोष होता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और वंदे मातरम पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में धारावाहिक उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था। हम सब जानते हैं वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उन्होंने इस वंदे मातरम गीत को संस्कृत निष्ठ बंगाली में रचा था। यानी इस गीत में बंगाली यानी कि बंगला भाषा और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। आनंदमठ उपन्यास का ये एक अंश है जो सबसे पहले धारावाहिक के रूप में बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था, जो एक साहित्यिक पत्रिका थी और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित की जाती थी। और 1770 के दशक में सन्यासी विद्रोह पर आधारित इसकी कहानी थी। और आनंदमठ बाद में 1882 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। लेकिन इसका ये जो अंश है और ये जो गीत है, इसने लोगों में बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह जगाया था। तो चलिए इसी बात पर हो जाए वंदे मातरम का ये गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म खेले हम जी जान से, इस फिल्म से। और जो मूल रचना में हिंदी भाषा के कुछ शब्द इसमें रखे हैं जो जावेद अख्तर ने लिखे हैं, और इसका संगीत दिया है सोहेल सेन ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, बुलंद जिसके हौसले हो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और जिसके हृदय में आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित है वो कहां से कहां पहुंच सकता है, इसका जीवंत उदाहरण है PT उषा। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है और हम आज उनके बारे में कुछ बात करेंगे। पिल्लावुल्ला कंडी ठेके परम्बिल उषा, PT उषा भारत की महानतम महिला एथलीट है, जिन्हें उड़न परी और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी पैयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक जीते हैं और वो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और ऐसे कई खेल पुरस्कारों और उपाधियों से भी नवाजा गया है। उनके जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और कई शानदार रिकॉर्ड बनाए। वो आजकल राज्यसभा सांसद भी हैं। तो यही एक बात हमको सीखनी है इन महानुभावों से कि जब भी कोई मुसीबत आए तो मेहनत करके उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ऐसा एक गाना सुना जाए, जब PT उषा दौड़ने वाली, खूब तेज दौड़ने वाली एथलीट के बारे में बात की है तो बादल पे पांव है, ये गाना आपको सुनवाने जा रही हूँ। चक दे इंडिया फिल्म का ये गाना है, हेमा सरदेसाई और साथियों की आवाज़ें हैं, जयदीप साहनी की शब्द रचना, सलीम सुलेमान का संगीत।

आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज केंद्र पर दोस्तों जय भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे एक ऐसे पार्श्व गायक की जिनकी आज जन्म तारीख है और उनको जन्मदिन की बधाइयां देंगे और उनका गाना भी सुनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते जो गाना है खून भरी मांग फिल्म का, फिर नूरी का शीर्षक गीत है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं नितिन मुकेश की बात कर रही हूँ। नितिन मुकेश एक जाने माने पार्श्व गायक है जो मुकेश पुराने फिल्मों के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक मुकेश के पुत्र है और उन्होंने 1980 और 90 के दशक में खय्याम, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लाहिरी, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, उसके बाद आनंद मिलिंद जैसे अनेक संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है और कई अभिनेताओं को अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं दरियादिल फिल्म का ये गाना नितिन मुकेश की आवाज़ में।

0: को कहते हैं हमसे।
1: और दोस्तों, एक और विशेष व्यक्ति जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनका गाना ही सुना देते हैं, तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं ये गाना।

तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं बात करना चाहती हूँ हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे महान संगीतकारों में से एक राहुल देव बर्मन के बारे में, जिन्हें प्यार से पंचम दा कहा जाता है। और उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक को, हिंदी सिनेमा के संगीत को आधुनिक रूप देने का श्रेय प्राप्त है। उनकी धुनों का जादू और उनके गाने का अंदाज दूसरे कलाकारों के पास अच्छी धुन प्रस्तुत करने का अंदाज लाजवाब है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि आज के युवा भी उनके गाने बड़े चाव से गाते हैं, जिसका उदाहरण है टीवी पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो, जिसमें युवा पीढ़ी जो है उन्हें भी राहुल देव बर्मन RD करके प्यार से लोग उन्हें बुलाते हैं। उनकी धुनें, उनके गाने बड़े मज़े से वो लोग गाते हैं। जी हाँ, और इनके बारे में कुछ रोचक बातें भी आपको बताऊंगी। और उनके स्वरबद्ध किए हुए कितने सारे गाने हैं, 331 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। और जैसे हम सब जानते हैं, वे दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन के इकलौते बेटे और पार्श्व गायिका, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के पति थे। और उन्हें पंचम नाम जो दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उन्हीं के द्वारा गाए हुए कुछ गाने, जिसमें उन्होंने अपना अंदाज जो है दूसरों से अलग हटकर जो बताया है वो लाजवाब है। शोले फिल्म का ये गाना आपको सुनवाने जा रही हूँ, राहुल देव बर्मन और साथियों की आवाज़ें हैं और उनका ही संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र पर जय भारती में हम बात कर रहे हैं पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन की। और अपने कैरियर में उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज गायकों के साथ काम किया और उनकी जो जुगलबंदी है, जोड़ी है, वो मजरु सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकारों के साथ भी बहुत प्रसिद्ध हुई। क्योंकि आनंद अमर प्रेम फिल्म के गंभीर गाने हो या तीसरी मंजिल के मस्ती भरे गाने हो या गोलमाल फिल्म के जो गाने हैं, तो अनेक गीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और ऐसे गाने दिए जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए, एक ऐसा ही गाना आप तक पहुंचाया जा रहा है। खुशबू फिल्म का ये गाना है, आशा भोसले ने इसे गाया है और गुलजार का लिखा हुआ ये गाना है, जिसमें संगीतकार तो आप जानते ही हैं, राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, अपने पिताजी एसडी बर्मन के साथ संगीत का अभ्यास करते हुए और रिहर्सल में बैठते जब राहुल देव बर्मन, तो प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें पंचम का नाम दिया था और वही उनका हिंदी सिने जगत का नाम बन गया था। तो ऐसे राहुल देव बर्मन को अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं और दूसरे कई सम्मान मिले हैं, और सबसे ज़्यादा उनको जो सम्मान है वो आज तक वो सबके हृदय में बसे हुए हैं। उनकी धुनें आज भी लोग गुनगुनाते हैं, मस्ती से नाचते हैं। तो चलिए, जय भारती कार्यक्रम का समापन करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ जो मस्ती भरा गाना है, और तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना है, मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़।

और इसके साथ ही आज का जय भारती समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय जवान। आप सुन रहे थे फौजी दोस्तों की सेवा में फिल्मी गानों का कार्यक्रम जय भारती, आकाशवाणी के अहमदाबाद राजकोट भुज केंद्र से, आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भुज केंद्र से। कुछ ही पलों में ठीक 2:15 पर दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स

0: भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IFFCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।

0: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ने शेर बसाया ई हाथू बापू जी ने आश्रम बनाया हाथू पण जेन बुद्धि पानिए एवा तमे नवेली नाथ केम कापो छो काचू
1: काचू काचू
0: अहमद शाह खरा पण अमदावाद ना नहीं
1: नहीं नहीं नहीं
0: बापूजी धरार काठियावाड़ ना बोलो खोटू के हाचू
1: हाचू हाचू।

0: નમસ્કાર. 354.6 દશાંશ મીટર્સ એટલે કે 846 કિલો હર્ટ્સ પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. મિત્રો, અત્યારે સાંજના 5 થવા આવ્યા છે. અમારી આજની બીજી સભાના કાર્યક્રમોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સભાની શરૂઆતમાં હિન્દીમાં સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી થોડી જ વારમાં આપ સાંભળશો.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં શક્તિ સિંહ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 3 દિન કી યાત્રા પર સેશેલ્સ પહોંચ ગયે હૈ. હવાઈ અડ્ડે પર સેશેલ્સ કે રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર પેટ્રિક હરમિની ને ઉનકા ગરમજોશી સે સ્વાગત કિયા. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મેં શ્રી મોદી ને ઇસકે લિયે રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હરમિની કા આભાર વ્યક્ત કિયા. પ્રધાનમંત્રી ને કહા કે સેશેલ્સ હિન્દ મહાસાગર મેં ભારત કા મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી સાજેદાર ઓર કરીબી મિત્ર હૈ. પ્રધાનમંત્રી ને કહા કે વે રાષ્ટ્રપતિ હરમિની કે સાથ દ્વિપક્ષીય સંબંધો ઓર હિન્દ મહાસાગર ક્ષેત્ર મેં સમુદ્રી સહયોગ કો ઓર મજબૂત કરને પર ચર્ચા કરેંગે. એક રિપોર્ટ.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है. विदेश मंत्री बैरी फोरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा. गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण. दूसरा, सारथी का सम्मान हो. वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है. आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है. तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है. चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया. केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल के ईएएम परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है. इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है. इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया. फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे. उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है. राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी. परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. कोलकाता के तारातला भवन में

दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।

0: के बोट माछीमारी करतु देखाय तो तुरंत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करो। हवामान ने समझी बनो सुरक्षित खेवाया। आपनी सजागता ने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मित्रो अपे विराम पहला किशोर कुमार ने सांभळ्या फिल्म हती परिचय। जेना गीतकार हता गुलजार अने संगीतकार कोण हता? संगीतकार हता आर डी बर्मन। जी हाँ, सौथी सफल संगीत निर्देशकों माना एक एवा आर डी बर्मन संगीतकार जेनो आजे जन्मदिवस छे। तेमना जीवनकाळ दरम्यान एमणे आपेला संगीतनो जादू एवो तो चाल्यो के एवुं कही शकाय के ज्यां सुधी संगीतनी दुनिया छे त्यां सुधी बर्मनदानुं संगीत अमर रहेशे। आओ एमनुं खूब ज फेमस एक गीत सांभळीए, 1942 अ लव स्टोरी फिल्मनुं गीत जेने स्वर आप्यो छे कुमार सानुए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार श्रोता मित्रों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है जो हमारे सभी देशवासियों के लिए भी है। संकल्पना यह है कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उसी दिन उसी स्वर्णिम क्षण पर हमारा राष्ट्र एक पूर्णतः विकसित राष्ट्र, विकसित भारत 2047, ये ड्रीम विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा राष्ट्र एक ध्येय, एक लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है। आज हमारे आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में विकसित भारत संकल्प संस्थान जयपुर के स्थापक प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर महेश शर्मा उपस्थित है। डॉक्टर महेश जी, आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मावानी जी।
0: डॉक्टर महेश जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हमारा सभी का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में सामान्य नागरिक है, सभी एक ही लक्ष्य के ऊपर हमारी पूरी गतिविधियाँ, पूरा एक जो स्वप्न है विकसित भारत 2047 उसकी ओर प्रगति कर रहे हैं, और साथ ही में समृद्ध भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, ये भी हमारी संकल्पना है। तो ये जो एक पूरा विजन है उसमें रोड मैप में कई सारे आयाम है, कई सारे पहलू है, कई सारे डायमेंशंस है
1: जी।
0: तो सबसे पहले संकल्पना कौन सी है?
1: देखिए, भारत सनातन संस्कृति का संवाहक राष्ट्र है। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसने कर्णवंतो विश्व माल्यम का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना तो अहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। ना मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, और ना ही पुनर्जन्म की भावना है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि इस देश में दुख से संतृप्त पीड़ित लोगों के दुखों के निवारण का निमित्त बन सकूं। ऐसी सनातन संस्कृति के संवाहक व्यक्ति के हाथ में जब भारत का नेतृत्व गया है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत आज संपूर्ण विश्व में नवीन नित नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। उन्होंने एक टर्म दिया है विकसित भारत का। हम सब जानते हैं कि भारत सनातन संस्कृति का संपन्न राष्ट्र रहा है। अनेक कालावधि से यदि हम देखें, वैदिक कालखंड से ही, तो हम प्राप्त करते हैं कि भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत की ऋषि परंपरा ने संपूर्ण विश्व को ज्ञानवान, चरित्रवान, संस्कारवान बनाने की प्रेरणा दी है। मानवता के कल्याण का भाव यहाँ वेद, उपनिषद, पुराणों आदि में सदैव से ही रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को आह्वान किया कि यह जो कालखंड है, यह अमृत काल का कालखंड है। इस अमृत काल के कालखंड में इस देश की समस्त सज्जन शक्ति, इस देश का युवा, किसान, मजदूर और प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम करे, अपनी उत्कृष्टता के साथ काम करे, तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने विकसित भारत संकल्प संस्थान की स्थापना की और देश की समस्त सज्जन शक्ति का आशीर्वाद स्नेह लेते हुए पुनः यह राष्ट्र कैसे अपने उन मूल स्वरूप को प्राप्त हो जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, जहां का संस्कार संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करता था। हम लोग मवाणी जी जानते हैं कि जैसे आकाशवाणी को भी यदि हम कहेंगे, तो यह शब्द भी हमारे पौराणिक शब्दों से ही निकला है कि प्राचीन काल में हम लोग देखते थे कि कोई आकाश से एक वाणी आती थी, उसको देववाणी या ईश्वर की वाणी के रूप में माना जाता था, और वही आकाशवाणी आज पूरे विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक, और आप लोग भी 1949 से ही यहाँ अहमदाबाद से इस विषय को लेकर विकसित भारत के निर्माण में अपने हिस्से का योग

0: योगदान दे रहे हैं, तो विकसित भारत संकल्प संस्थान भी अनेक आयामों को लेकर इन्हीं विषयों पर काम कर रहा है।
1: डॉक्टर महेश जी, जैसे कि आपने बताया कि पूरा राष्ट्र एक ही स्वप्न के लिए काम कर रहे हैं, विकसित भारत 2047, तो उसमें सबसे पहला एक शब्द है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इसके बारे में आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति का समृद्ध विकास हो, जो सार्वलौकिक हो, सर्वस्पर्शी हो और बहुआयामी हो। भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें हम लोग देखते थे कि प्राचीन काल से ही वह गांव जो था वो समृद्धशाली और गौरवशाली गांव के रूप में रहता था। आज भी सरकारें अपनी ओर से यथा योग्य प्रयास कर रही हैं, अनेक सामाजिक संगठन प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर अपने अपने से जुड़े हुए संदर्भित लोगों को आगे लेकर चलने का। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा है, अंत्योदय का जो विषय दिया, कि समाज जीवन के अंतिम पायदान पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, वह भी समाज का ही घटक है, वह दूर नहीं है। और हम लोग कहते ही हैं कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक कल्याणकारी नीतियां समाज जीवन के अंतिम पायदान पर जीने वाले व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए हैं। कुछ वो आगे बढ़ें, कुछ जो समृद्धशाली समाज है वह झुक जाए, कुछ पीछे वाला तेज गति से चलेगा, तो एक समावेशी समाज का निर्माण होगा और एक श्रेष्ठ भारत के लिए, एक भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, खुशहाल भारत के लिए, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर आने वाले समय में और अधिक प्रयास करते हुए काम करने होंगे।
1: 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का नंबर 10 पर था और आज 2024 में भारत का नंबर विश्व इकोनॉमी में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और ये विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करने के लिए एक हमारा मजबूत आर्थिक फाउंडेशन है, ये होना आवश्यक है, इसके बारे में आप बताइए।
0: भारत एक विशाल महान संस्कृति को संपन्न राष्ट्र रहा है। दुनिया के तमाम लोगों को जब तन ढकने का भी नॉलेज नहीं था, तब भारत में वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ किया जाता था। दुनिया के तमाम कोने के लोग, हमने सुना है, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, फ्रांसीसी, यूरोपी, सब लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। गुजरात के ही सूरत में अंग्रेजों ने यहाँ आकर अपना पड़ाव डाला। इतना आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत था जो 10वीं-11वीं शताब्दी तक पूरे विश्व का आर्थिक नेतृत्व करता रहा है। यहाँ की प्रजा, जनता, राजा, उस सब के पास दूध, धन आदि के भंडार थे, स्वर्ण भंडार थे। हमारे यहाँ के रत्नाभूषणों से बने हुए स्वर्ण मंदिरों की चर्चाएं भी हम हमारे गौरवशाली इतिहास में सुनते ही हैं। भारत जब आजाद हुआ, उस कालावधि तक भी यदि हम देखेंगे तो $1 और ₹1 का मूल्य समकक्ष था। भारत उस समय भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की था। आज पुनः इस बात को लेकर भारत गर्वान्वित है कि भारत और भारतीयता संपूर्ण विश्व में स्थापित हो रही है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत उभरती हुई दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता जा रहा है। आज हम 4थे स्थान पर पहुंचे हैं। यदि कुछ सैकड़ों वर्षों तक हमारा भारतीय जीवन दर्शन को जीने वाला समाज पूर्ण सामर्थ्य से लग जाएगा, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम विश्व का नेतृत्व करने वाली एक आर्थिक सामर्थ्य के रूप में होंगे। पर इसके साथ साथ ही एक चिंतनीय विषय बिंदु और है, वह है पर कैपिटा इनकम। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जब तक अधिक नहीं होगी, तब तक जीवन जीने का स्तर सबको सहज भाव से मिल पाना कठिन होता है। आज हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से थोड़े कमजोर हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर देखें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $68,000 के आसपास है, जबकि भारत में यह केवल $3,000 के आसपास है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए इसे $15,000 के आसपास होना चाहिए। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेंगे।
1: जो आपने बताया कि पर कैपिटा इनकम है वो अभी $3,000 है और उसको विकसित भारत की संकल्पना के आने के लिए $15,000 की आवश्यकता है
0: जी।
1: तो ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए भी हमें बेसिकली एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो ये नॉलेज एम्पावरमेंट के लिए क्या हमारा प्लान है?
0: देखिए, वैसे तो भारत के अंदर जो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि विश्व को देने के लिए पर्याप्त सदैव से रहा है, शून्य से लेके, गणित से लेके, खगोल से लेके, विज्ञान से लेके, तकनीक से लेके, सदैव दुनिया को भारत ने दिया ही दिया है। धार्मिक मान्यताओं से लेकर जीवन जीने की कला तक, आर्थिक दृष्टि से देखे सामरिक विकास तक, सब कुछ भारत ने दिया है। और आज भी भारत के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, जो IITs वगैरह है, IIM है, इनसे पढ़े हुए डॉक्टर, वैज्ञानिक, CA, एडवोकेट, इंजीनियर संपूर्ण विश्व में

0: सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक भारत के लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में नालंदा और तक्षशिला के जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं जो ज्ञान के स्रोत रहे हैं। उस समय भी फाइयान हेनशांग जैसे चीनी दर्शन शास्त्रियों ने लिखा अपनी यात्राओं के वृतांत में कि भारत में शिक्षा के उत्कृष्टतम केंद्र संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहे। पर दुर्भाग्य से बीच का जो कालखंड आया उसमें हमने अपनी शैक्षणिक गरिमा को खो दिया। आज विकसित भारत संकल्प संस्थान पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के मनोभाव से लगा हुआ है और संपूर्ण विश्व में अपनी सज्जन शक्ति का सृजन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भारत में बने, जो नालंदा और तक्षशिला के जैसा हो, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जैसा हो, जो स्टैनफोर्ड के जैसा हो, जहां ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट नहीं, ए से अब्दुल कलाम, बी से भगत सिंह, सी से चंद्रशेखर, डी से दुर्गादास भी पढ़ाया जाए, तो वहां पर ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, सी से कनाडा, डी से डेनमार्क, ई से इजिप्ट भी पढ़ाया जाए, तो आज के आधुनिक संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जिन विषयों पर काम कर रहे हैं, तो ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी से ब्लॉकचेन, सी से क्लाउड कंप्यूटिंग, डी से डेटा माइनिंग, ई से ई लर्निंग, एफ से फिनटेक और जी से जियोपॉलिटिक्स के विषयों पर जब भारत प्रगति करेगा तो पूरे विश्व का नेतृत्व निश्चित तौर पर हम लोग कर रहे हैं, आगे तक करते रहेंगे। और भारत के लोगों को जो नेतृत्व सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है वह इस दृष्टि से दिया है कि मानवता के कल्याण का स्वभाव भारतीय सनातन जीवन पद्धति में ही संभव है, अन्य जीवन दर्शनों में वह भाव नहीं है। वहां व्यक्तिवाद का भाव है और यहां राष्ट्रवाद का भाव है। हम लोग राष्ट्र प्रथम और नेशन फर्स्ट की भावना से जीने वाले लोग हैं।
1: डॉक्टर अमित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि मतलब ये जो शिक्षण और ज्ञान के क्षेत्र में हमारे क्या आवश्यकता है और किस विषयों पर हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही समृद्ध भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत के लिए प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ है वो भी सुदृढ़ रहना चाहिए। हेल्थ और वेलनेस ये भी हमारे एक जो प्रमुख मंत्र रहे, तो उसमें क्या संकल्पना है?
0: हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सदैव से कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। मनुष्य जब स्वस्थ रहेगा तो वह स्वयं के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए सोच पाएगा। स्वास्थ्य एक वृहद परिदृश्य है। आज के संदर्भ में देखें तो देश का स्वास्थ्य और देशवासियों का स्वास्थ्य अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। एक ओर हम रचनात्मक दृष्टि से देखें तो देश निरंतर नित नवीन प्रगति कर रहा है, परंतु दूसरी ओर देखें तो डायबिटीज में भारत नंबर वन है, मोटापे में भारत नंबर वन है। ऐसे ही प्रकार की अनेक प्रकार की जो अवसाद की बीमारियां छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है, डिप्रेशन की समस्याएं देखने को मिल रही है, बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही है, और इन सब के कारण जो अनेक प्रकार के तनाव परिवारों में होते जा रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन कम हो रहा है, छोटे परिवार होते जा रहे हैं, डिंग फैमिलीज खड़ी हो रही हैं, डबल इनकम नो चाइल्ड का कॉन्सेप्ट परिवारों में आता जा रहा है, ये सब हमारे नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। एक समग्र राष्ट्र के निर्माण के लिए समग्र स्वास्थ्य योजना की आवश्यकता है। हम बीमार ही क्यों पड़े, हम प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी काम करें। हमारे वेदों में, पुराणों में, अनेक स्थानों पर एक स्वस्थ जीवन शैली कैसी होती है, जहां हम अपने आप को समृद्ध और सुसंस्कृत बनाते हुए राष्ट्र के लिए चिंतन करें। भारत सरकार ने अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, मेडिकल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम नित नवीन प्रयोग करते जा रहे हैं, आयुर्वेद और योग के सामर्थ्य को संपूर्ण विश्व स्वीकार करने लगा है। हम भारतीय जीवन पद्धति को स्वीकार करें, आहार विचार में शुचिता लेकर आए, तो हम देखेंगे कि बीमारी का औसत स्तर कमजोर होने लगेगा, हटने लगेगा, दूर होने लगेगा। हम भारतीय जीवन शैली जो हमारी दादी नानियों के द्वारा घर परिवारों में ही बताई जाती थी, उसकी ओर भी हमको लौटना होगा, हमारे रूट्स की ओर हमें जाना पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने भी तय किया है कि हम देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण पैदा करेंगे, इस प्रकार के संस्थानों का निर्माण करेंगे जहां भारत का और भारतवासियों का, उनके स्वास्थ्य का सुधार हो, उनका स्वास्थ्य यानी उनका आर्थिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य और फिर शरीर का स्वास्थ्य, और शरीर में भी मन बुद्धि विचार सब अगर निर्मल होंगे तो निश्चित मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी।
1: डॉक्टर महेश जी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है, हमारी ये जो जंगल है उसका संवर्धन करने की आवश्यकता है, फिर बहुत सारे पहलू है उसके साथ साथ, एक तरफ से औद्योगिकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है और साथ ही में हमारा पर्यावरण जो एक नाजुक है संतुलन मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्व का आयाम है, इसके लिए हम विकसित भारत में क्या संकल्पनाएं हैं?
0: देखिए, वैसे तो इस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकृति संबंध जीवन जीने की दृष्टि

0: से ही निर्मित किया है। और साथ ही चूंकि हम सभी प्राणियों में सबसे सुसंस्कृत जीव हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेकर ही समावेशी विकास करें। सबके साथ का अभिप्राय है कि प्रकृति में जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है, जहां जल थल अग्नि आकाश पवन सबकी हम अगर बात करते हैं, तो सबके समाहित विकास की जिम्मेदारी मनुष्य की है। यद्यपि यह सत्य है कि बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण हमने हमारे इकोसिस्टम को कमजोर किया है। जहरीली वायु, नंगे पर्वत, हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे क्या यही पर्यावरण संरक्षण है? और दुर्भाग्य से कई बार पर्यावरण संरक्षण पर होने वाली चिंताएं भी 5-स्टार होटलों में हो रही हैं, जहां की एसी की गर्मी से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को भी कमजोर कर रही हैं। तो विकसित भारत संकल्प संस्थान ने एक संकल्पना ली है कि एक स्वस्थ पर्यावरण की जागरूकता आम व्यक्ति में कैसे आए। यद्यपि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही हमारा मनुष्य जीवन जो है वो धर्म सम्मत जीने की जो प्रवृत्ति देता था, जहां चींटी को भी दाना डालने की बात थी, जहां तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा रही, तुलसी और पीपल के पौधों को हमने देव के रूप में इसलिए स्वीकार किया कि वो 2400 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उनके अंदर के एल्कलॉइड्स शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं। तो मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से देश के सभी श्रोतागणों से भी निवेदन करूंगा कि यह पर्यावरण अगर संरक्षित रहेगा तो ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। आइए मिलकर एक सुसंस्कृत विश्व अगली आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम देकर जाएं, तो उसके लिए हमको प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के कालखंड में कम से कम 4 पौधे लगाने की तो नैतिक जिम्मेदारी ही है। 4 बड़े पौधे को पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी मनुष्य को लेनी चाहिए। अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति या अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति के अवसर पर नंदन कानन बनाने की परंपरा हमारी होनी चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि जो बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं उनको कुछ अच्छे एनजीओ को देके, अच्छे सामाजिक संगठनों के साथ इस विषय को लेकर ना केवल पेड़ लगाना वरन वह जीवित कैसे रहेगा और अन्य किस प्रकार से जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है, समुद्र के अंदर का भी जो पर्यावरण है वह भी हमें संतुलित रखने की आवश्यकता है। सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां शून्य होती जा रही है। कई स्थानों पर हम देखेंगे कि गौरैया का अस्तित्व संकट में है। कई स्थानों पर देखेंगे कि अनेक ऐसे प्रकार के वन्य जीव असुरक्षित महसूस करते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि जंगलों से आकर कभी बाघ चीते भी शहरों में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ने उनके प्राकृतिक आवासों को छोटा बना दिया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने विकास की भी चिंता करें और अपने सहचर जितने भी वन्य जीव हैं उनके संरक्षण संवर्धन की भी चिंता करें। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने भी पूरे देश में इस प्रकार की मुहिम चला रखी है और अनेक अवसरों पर करोड़ों पेड़ अभी तक लगाए गए, आगे की भी कार्य योजना है।
1: डॉक्टर महेश जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। श्रोता मित्रों के लिए आपकी पसंदगी का फिल्म गीत।
0: मुझे लगता है कि आज हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र को समर्पित मेरा रंग दे बसंती चोला, यह गीत आकाशवाणी अहमदाबाद के माध्यम से सुनाएंगे तो बहुत आनंद रहेगा।
2: मेरा रंग

0: हाईएस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं वो भारत से ही है। तो इसके बारे में जो संकल्पना है विकसित भारत 2047 के लिए, इसके बारे में आप बताइए।
1: देखिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति हर समस्या में से समाधान और नए मार्ग ढूंढ लेता है, और साथ में ही वो इतना आइडिया क्रिएटर है कि जब भी उसको जिस विषय के बारे में उसे जानकारी नहीं भी है तो भी अगर उससे चर्चा कर देंगे तो 200 सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देने को तैयार है कि देश को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए। और उसी मानसिकता में से निकल कर आता है स्टार्टअप इनोवेशन। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि भारत के युवा आज तकनीकी की दृष्टि से भी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे गूगल में हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में हो, चाहे सत्य नडेला हो, चाहे सुंदर पिचई हो, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले भारतीय हो, भारतीय युवा वैज्ञानिक IITs के माध्यम से, IIM के माध्यम से और छोटे छोटे गांवों के माध्यम से भी स्टार्टअप्स को बना रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स न केवल हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि पिछले 10-20 वर्षों में जो न्यू एज जनरेशन के लोगों ने ओयो, उबर, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम ऐसे सैकड़ों प्रकार के इनोवेशन खड़े किए हैं, जो मल्टी बिलियन कंपनीज के रूप में खड़े हुए हैं, भारत के युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने में भी ये मदद कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक युवा को कहूंगा कि भारत में परंपरा भी इसी दृष्टि की रही है कि आप लोगों को रोजगार देने वाले की मनोवृत्ति का बनना चाहिए, और सरकारों को, समाज को भी चाहिए कि ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करें। ऐसी अनकही कहानियों को आकाशवाणी भी अपने माध्यम से लेकर देश भर में सुनाए ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित हों, ऐसा नवाचार युक्त वातावरण देश में और आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा और अभिलाषा रहेगी।
0: डॉक्टर महर्षि, आपने बहुत ही अच्छी बात किया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में, साथ ही में राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच में परस्पर सहयोग रहे, सद्भावना रहे, ये भी एक आवश्यक है। तो ये जो परस्पर सद्भावना की और भाईचारा की भावना है, सहयोग की भावना है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या आप कार्य कर रहे हैं?
1: देखिए, भारत इतने महान लोगों की पुण्य भूमि है, जहां कहा गया है कि गायन्ति देवाः किलकीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह वह देव भूमि है, वह पुण्य भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ये भगवान राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ महाराणा प्रताप हुए हैं, यहाँ शिवाजी हुए हैं, यहाँ दानवीर कर्ण हुए हैं। ऐसे युग पुरुषों से प्रेरणा लेकर, जिनका रक्त हमारी शिराओं में समाहित हो रहा है, सबको साथ लेकर चलने की मनोवृत्ति इस भारत में रही है। तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की दृष्टि से देखें तो जो विकसित भारत संकल्प संस्थान ने संकल्प लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भारत में बने, जहां देयर इज नो फीस काउंटर फॉर द नीडी स्टूडेंट्स, किसी भी ऐसे विद्यार्थी के लिए कोई फीस काउंटर नहीं हो जो आर्थिक दृष्टि से कम समृद्ध है, उस दृष्टि से हमने देश के अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैग्सेसे, वीर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अनेक लोगों का एक मेंटर बोर्ड बनाया है, मार्गदर्शक मंडल बनाया है। साथ ही भारत के अंदर जो 84,000 से ज्यादा कॉलेज हैं, 26 लाख से ज्यादा स्कूल हैं, 1,198 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, उनके डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, VC सबको आग्रह किया जा रहा है कि आइए एक समृद्ध, सुसंस्कृत, विकसित राष्ट्र का निर्माण में अपने हिस्से की आहुति दीजिए। जिनके पास विचार है, स्वभाव है, आशीर्वाद है, वो सब प्राप्त हो। और विकसित भारत संकल्प संस्थान विश्व का अनूठा संस्थान इस दृष्टि से भी बन रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा संकल्प लिया गया है कि 1 लाख गांव से पानी, मिट्टी, अन्न, दान और सज्जन शक्ति का संग्रह करते हुए इस अभियान को लेकर चलना है। 1 लाख से अधिक कक्षा कक्ष वहां बनने हैं, 1 लाख विद्यालय गांवों की मिट्टी से निर्मित ईंटों से जब वह परिसर का निर्माण होगा तो एक सांस्कृतिक लघु भारत वहां पर दिखाई देगा। वहां पर आने वाले देश के 6 लाख से अधिक गांवों से पढ़ने वाले विद्यार्थी उस परिसर में आकर रह सकें, पढ़ सकें, इनोवेशन से लेकर स्टार्टअप तक और वैदिक धर्म, दर्शन, नीति, इतिहास, साहित्य से लेकर समग्र विषयों के विषय विशेषज्ञ वहां से तैयार हों। दुनिया के अंदर जितने नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जितने प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर है, वो भी गेस्ट फैकल्टीज के रूप में आए। दुनिया के 197 देशों के अंदर जितना भी भारतीय समुदाय है, उनका भी एक समग्र आशीर्वाद लेने की रणनीति बन रही है, ताकि भारत का यह जो ज्ञान का केंद्र बनने वाला है, आने वाले हजारों वर्षों तक भारतीय जीवन दर्शन को शाश्वत और निरंतर करते हुए एक ज्ञान की गंगा का प्रवाह लेकर आगे बढ़े, इस मनोभाव से यह सब चल रहा है।
0: हमारे प्राचीन ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिखी गई है और हम सभी इसी मंत्र के साथ ही अपना जीवन जी रहे हैं। सभी के लिए, सभी के मन में मानवता का एक भावना हो और साथ ही

0: में जो पूरा समाज है वो एक सामाजिक समरसता की भावना से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए आप बताइए।
1: देखिए हमारे यहाँ कहा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह जो ग्लोबल विलेज की बात आज पूरी दुनिया करने वाली है, कर रही है, ये 10,000 वर्ष से पूर्व वेदों में लिखा हुआ है। यह मेरा है, वह तेरा है, ये तो छोटे मनोवृत्ति के लोग काम करते हैं। यहां तो इस पद्धति के लोग रहे हैं कि हर बार प्रभु भारत भू पर नव जन्म मिले नव तन पाकर, हर बार प्राण उत्सर्ग करूं माँ के चरणों में हंस गाकर। मेरा रंग दे बसंती चोला कहने वाले लोग, जिन्होंने केवल देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसा संपूर्ण विश्व को अपना मानने वाला जो भारतीय जीवन दर्शन है, उसका प्रभाव आज विश्व भर में देखने को मिलता है। जैसे हम देखेंगे कि थाईलैंड के अंदर एक नदी है जिसका नाम है मैगोंग, उसका नाम माँ गंगा से पड़ा हुआ है। इंडोनेशिया का जो गरुड़ एयरवेज है वो हमारे गरुड़ पक्षी के नाम पर पड़ा हुआ है। वहां के राष्ट्रपति ने अपने बेटे का नाम सुकर्णो रखा। जब उनको पूछा गया कि आपने सुकर्णो क्यों रखा, यद्यपि वो इस्लामिक मतावलंबी हैं, वो कहते हैं कि हमने हमारी पूजा पद्धति बदली है, हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं, सनातनी रहे हैं। महाभारत के अंदर जो कर्ण थे वो कर्ण बहुत अच्छे पात्र थे, पर उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। मैं चाहता हूं मेरा बेटा कर्ण के जैसा बने, लेकिन वह अच्छे संस्कार वाला होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसका नाम सुकर्णो रखा। तो हमारी सभ्यता संस्कृति संपूर्ण विश्व का सदैव से नेतृत्व करने वाली ही रही है।
2: विकसित भारत 2047 इस विषय पर श्रोताओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन देने के लिए और डॉक्टर महेश शर्मा, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में उपस्थित रहे। आकाशवाणी अहमदाबाद परिवार की ओर से आपका विशेष आभार, धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी अहमदाबाद को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना उत्कृष्ट परिसर आपने बना रखा है, और 1949 से ही लेकर अभी तक आप लोग इस राष्ट्र जागरण के अभियान में लगे हुए हैं। तो आकाशवाणी की अपनी यह प्रतिष्ठा नित निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसी शुभेच्छा के साथ प्रणाम करता हूं। डॉक्टर महेश शर्मा, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।

विकसित भारत 2047 पर विकसित भारत संकल्प संस्थान के संस्थापक प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर महेश शर्मा के साथ हितेश मावाणी की भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।

हाणे ताईं ममता खूबचंदा खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 ॾींहनि जी सेशल्स यात्रा ते विक्टोरिया पहुतो आहे। अमेरिका जे परडे॒ही मंत्री मार्को रूबियो चयो, ट्रंप जी हुकुमरानी भारत खे अमेरिका जो सभ खां वेझे रिथाबंद बांगे भाईवरनि मां

0: मञींदो आहे। गरु ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात जे खास 14 शहरनि में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सीअ जी शुभ शुरूआत कई। तमिल फिल्मुनि जे नामियारे अदाकार ऐं हिदायतकार के भाग्यराज जो चेन्नई में 73 सालनि जी उमिरि में चालाणो। आबहवा महकमे ईंदड़ ॿिनि टिनि ॾींहनि जे दौरान ओलह बंगाल जे हेठाईअ वारनि इलाइक़नि ऐं सिक्किम में ज़ोरदार बरसाति जा इम्कान ज़ाहिर कया। ऐं यूएस ओपन बैडमिंटन चटाभेटीअ में भारत जी देविका सिहा ऐं रोनक चौहान सेमीफाइनल में पंहिंजी जाइ पुख्ती कई। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिन ॾींहनि जी सेशल्स यात्रा ते विक्टोरिया पहुतो आहे। हवाई अॾे ते सेशल्स जे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनीअ उन जो दिलि सां स्वागत कयो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदीअ इन ॻाल्हि लाइ राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनीअ जी साराह कई। प्रधानमंत्रीअ चयो त सेशल्स हिंद महासागर में भारत जो अहम सामुंडी भाङेबाई वार आहे ऐं पको दोस्त बि आहे। श्री मोदीअ ॿिन्ही मुल्कनि जी अवाम जे फ़ाइदे लाइ भारत ऐं सेशल्स जे गहरे तालुक़नि ऐं सहकार खे ओॼ ॾियण वास्ते सार्थक यात्रा जी कामना कई। प्रधानमंत्री हवाई अॾे ते गरम जोशीअ सां स्वागत करण लाइ प्रवासी भारतीय बिरादरीअ जी शुकराना मञिया। प्रधानमंत्रीअ सेशल्स जे 50 आज़ादी ॾींहं जे समारोह में मुख्य महिमान तौरु हू साहिब सेशल्स जे राष्ट्रपतिअ जे समारोह में शिरकत कंदड़ भारत जो पहिरियों प्रधानमंत्री हूंदो। गरु ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह चयो आहे त सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सीअ जो ईंदड़ ॿिनि सालनि में मुल्क भर जे 500 शहरनि ऐं कस्बनि में विस्तार कयो वेंदो। गुजरात में भारत टैक्सीअ जो शुभ मुहूर्त कंदे श्री शाह इन पहल खे सहकारी खिते में हिकु क्रांतिकारी क़दम ॿुधायो। हुन चयो त भारत टैक्सीअ जो मक़सदु ड्राइवरनि खे सिधो लाभ पहुचाइणु ऐं बेरियाव तोड़े शफ़ाफ़ इंतिजाम जी ख़ातिरी करणु आहे। अचो त ॿुधूं।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह डेयरी उत्पादन से लागापियल सहकारी अभियान की कामयाबी जो भी जिक्र कयो। अचो त बुधो।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: अमरीकी परडे॒ही मंत्री मार्को रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जी अॻुवाणी जी साराह कंदे चयो त भारत जिक्र जोगी आर्थिक तरक़ी कई आहे ऐं वैश्विक सतह ते उन जो किरदार लगातार मज़बूत बणिजी रहियो आहे। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो चयो त ट्रंप जी हुकुमरानीअ भारत खे सभ खां क़रीबी रिथाबंद भाङेबाई वार तौरु मञींदो आहे। अचो त ॿुधो।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: ही समाचार तभी आकाशवाणी ता बुधी रहे आयो। वधिक समाचारन जी तफसील जे लिए तवां असंजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था। ही समाचार तवां असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते भी बुधी सघो था। तमिल फिल्मुनि जो मशहूर अदाकार, डायरेक्टर ऐं स्क्रीन प्ले

0: लेखक के भाग्यराज जो अॼु चेन्नई में 73 सालनि जी उमिरि में चालाणो थियो। हू साहिबु तमिल फिल्मुनि में पंहिंजे शानदार स्क्रीन प्ले ऐं डायलॉग लिखण जे लाइ ॼातो वेंदो हो। हुन साहिबु 25 खां वधीक तमिल फिल्मुनि जी हिदायत कई ऐं लॻभॻि 75 फिल्मुनि में अदाकारी कई। राज्य सरकार समूरे राजकीय सन्मान सां उन जे अंतिम संस्कार जी पधराई कई। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय समेत केतिरनि ई अॻवाननि उन खे श्रद्धांजलि अर्पण कई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महान फिल्मुनि निर्माता अदाकार ऐं स्क्रीन प्ले लेखक के भाग्यराज जे चालाणे ते गहरे डुख जो इज़हार कयो। उपराष्ट्रपतिअ सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त श्री भाग्यराज पंहिंजी यादगार फिल्मुनि कहाणियुनि खे चवण जी ख़ासि अदा ऐं जिक्र जोगी स्क्रीन प्ले डायलॉग ज़रिए भारतीय फिल्म जगत में गैर मामूली किरदारु अदा कयो। आबहवा महकमे ईंदड़ 3 खां 4 ॾींहनि दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जे बाक़ी हिसनि, झारखंड, बिहार ऐं उत्तर प्रदेश तोड़े उत्तराखंड जे कुझु हिसनि में ॾखण ओलह में चौमासे जे अचण जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। महकमे ईंदड़ ॿिनि ॾींहनि जे में ओलह बंगाल जे हेठाईअ वारनि इलाइक़नि ऐं सिक्किम में ज़ोरदार बरसाति जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। एटमी तवानाई मंत्री अजित कुमार मोहंतीअ तमिलनाडुअ जे कल्पकम में इंदिरा गांधी एटमी तहक़ीक मर्कज़ में विश्व जे पहिरें हाइड्रोजन पैदावार मर्कज़ जी शुरूआति कई। हिकु रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाणे सुबुह जो 11 बजे आकाशवाणी तां मन की बात कार्यक्रम जे दौरान ॾेह तोड़े पर ॾेह जे माण्हुनि सां पंहिंजा वीचार बंडींदो। इहा इन माहियाने रेडियो कार्यक्रम जी 125 कड़ी हूंदी। कार्यक्रम जो सिधो नशरियात आकाशवाणी ऐं दूरदर्शन जा सभई नेटवर्क, NIR न्यूज़ वेबसाइट ऐं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ते बि कयो वेंदो। इन जो सिधो नशरियात NIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ़्तरु तोड़े सूचना ऐं नशरियात वज़रात जे यूट्यूब चैनल ते पिणु कयो वेंदो। हिंदी नशरियात जे तुरत बैदि आकाशवाणीअ खां इलाइक़ाई ॿोलियुनि में बि इन कार्यक्रम खे नशर कयो वेंदो। कोलकाता जे तारातला इमारत में थियल हादसे में फौतियुनि जो अदद 17 थी वियो। राहत ऐं बचाव जे कमनि में फ़ौज, राष्ट्रीय आपदा मोचन दस्तो, रेलवे, नागरिक सलामती, राज्य आपदा जवाबी दस्तो ऐं ॿिया इदारा मिली करे कम करे रहिया आहिनि। रांदुनि पासे रुख कंदे US ओपन बैडमिंटन चटाभेटीअ में भारत जी देविका सिहांग ऐं रौनक चौहान सेमीफाइनल में पंहिंजी जाइ पुख्ती कई आहे। कैलिफोर्निया जे फुलरटन में महिला सिंगल्स जे क्वालिफायर में देविका जापान जी रिको गुंजीअ खे शिकस्त ॾिनी। हाणे हुन जो सामनो डेनमार्क जी लाइन क्रिस्टोफरसन सां थींदो। मुख्य समाचार हिकु भेरो ॿीहर ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 ॾींहनि जी सेशल्स यात्रा ते विक्टोरिया पहुतो। अमेरिका जे परॾेही मंत्री मार्को रूबियो चयो त ट्रंप जी हुकुमरानी भारत खे अमेरिका जो सभ खां वेझो रिथाबंद बांगी भाईवार मां हिकु मञींदो आहे। घरू ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात जे ख़ासि 14 शहरनि में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सीअ जी शुभ शुरूआति कई। सिंधी समाचारनि जो इहो अंक ते समाप्त थियो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। नमस्ते।

अछम तछम सत्यगतिग्रा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति संगता खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

0: लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटानिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का

0: उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नाम

0: अनुकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमरीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat programme on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने

मेरी ट्यून चुरा ली? सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आरडी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी

गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का मुसाफिर हूँ यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूँ। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।

0: याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
1: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: आज के फनकार आ कार्यक्रम अब आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा केंद्र पर थी सांभळी रह्या हता।

0: મિત્રો, બરાબર 10 વાગે સંગીતનો અખિલ ભારતીય કાર્યક્રમ આપ અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી સાંભળી શકશો.
1: યે આકાશવાણી હૈ સંગીત કે અખિલ ભારતીય કાર્યક્રમ મે પ્રસ્તુત હૈ પ્રભાત મુખોપાધ્યાય કા સંતૂર વાદન. સમૃદ્ધ સંગીત પરંપરા વાલે પરિવાર મે જન્મે પ્રભાત ને સંતૂર કી દુનિયા મે અપની અલગ પહેચાન બનાઈ હૈ. આપને સબસે પહેલે શ્રી દુલાલ રોય સે સંગીત કી શિક્ષા પ્રાપ્ત કી. इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई. आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की. वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं. संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है. आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं. आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए. आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया. हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी. एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं.
2: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय. Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of santoor.
3: He was initiated by Sri Dulal Roy.
2: He took taleem from Ustad Sabir Khan in tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in santoor from Pandit Torun Bhattacharya and Padmashri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
1: Aapke saath

0: आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो

0: में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by Prabhat Mukhopadhyay. He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप

0: गजब थी गई। उठो ने।
1: कौन से
0: दीदी? दीदी हूँ फाल्गुनी छू। उठो कहू छू, जल्दी उठो।

अचला दामिनी मेहता, मिहिर रमेश भट्ट, अमी पायल पंड्या, देवेन नरेंद्र जोशी, फाल्गुनी सरला चौकसी।

0: क्या दिलकशी, क्या है खूबी, क्या खूब रुई खुश नुमाई, खूबसूरती क्या बनी, देखी नायसी दिलरुबाई, क्या हुस्न है, क्या हुस्न है, क्या हुस्न है, क्या आपकी है यह लाल मटकी?
1: हाँ, मेरी है यह लाल मटकी।
0: लाल मटकी महियारिनी की लाल मटकी, तो आप क्यों इस छावनी में आई ना महियारिनी?
1: थाक लाग्यो बादशाह, सही अरनी साथे मोकल्यू, मही वेचवा थी काम मारे।
0: काम जो मही वेचवानु, जाते न केम पदार्था, दाम मोमा ग्या मरे।
1: दाम मोमा ग्याज मारे, जोईता न थी बादशाह, सौने मळे ते बस मने, सरखा मही छे बादशाह।
0: मही होय बले सरखा, पण ना महियार न होय बदी सरखी।
1: केम भारत जी अवळू वदतो, केम मानस थई तू गमार थतो।
0: हिंदवाणी तुम बड़ी बोल की, बादशाह को देवे जवाब।
1: हाँ,
0: मैं कहूँ बादशाह सुनो, गुज्जरी सुनो हमारी बात।
1: क्या
0: अलियां गलियां क्या फिरना, गोरी आवो छावनी आप।
1: क्या
0: छावनी बैठी पान झिमो, गोरी खेलो हमसे पार।
1: अलियां गलियां बहुत भली मोरी, अलियां गलियां बहुत भली, तेरी छावनी लगा दूं आगरे।
0: काच कथिर क्या पहनना, काच कथिर क्या पहनना, गोरी पहनो सोना सेर।
1: काच कथिर मेरो बहुत भलो, काच कथिर मेरो बहुत भलो, तारू सोनू मारे झेर रे।
0: मकना हाथी अजब बना, गोरी हाथी देखन आओ।
1: तेरे हाथी में क्या देखना बादशाह, तेरे हाथी में क्या देखना, मेरे आंगन बूरी भैंस, टंग के सवा मन दूध करे, तेरे हाथी से वाली मेरी भैंस रे।
0: मेरी मूछे अजब बनी, मेरी मूछे अजब बनी, गोरी मूछों पे मोही आव।
1: तेरी मूछों में क्या देखना बादशाह, तेरी मूछों में क्या देखना, मेरे बकरे को ऐसा पूछ रे।
0: अजब गुज्जरी गजब गुज्जरी, बात करे बेफाम, किस मुल्क की तू है नारी, क्या है तेरा नाम?
1: गढ़को कुलकी मैं गोवालन, मैं ना मेरा नाम, चंदा पुरुष के घर की नारी, बात करो न हराम।
0: मैं ना बहुत बात क्या करना गोरी, सुनो इश्क की हाय, शाह का इश्क बड़ा है गोरी, बैठो पर्दा माए गुज्जरी, बैठो पर्दा माए।
1: लार शरम ते मुकी बादशाह, लार शरम ते मुकी बादशाह, सुधबुद तुझने नोय, इंसान मटी हैवान बन्यो तू, इंसान मटी हैवान बन्यो तू, गालन अद की होय।
0: गलबल गलबल क्या बोलती गोरी, बोलो समझ की बात, पूरे हमारी दुनिया भर की बड़ी बनी बादशाह, इंसान सभी है वान अबल है, इसमें न गाली कोई।
1: अरे वान सभी तुम शाही लोको, है वान सभी तुम शाही लोको, दुर्जर एवा नोय।
0: अरे गुज्जर में तू क्या मोही है, गुज्जर लोक गोवाल,
1: गुर्जर गुर्जर बहुत भले मेरे, गुर्जर गुर्जर बहुत भले मेरे, शाही लोक के काल, शाही लोक के काल।

0: बादशाह शाही लोग के काग अत्यारे हूँ एक लड़ी अत्यारे हूँ एक लड़ी पण दिल्ली था से राख मने न जानी से एकली मारा गुजर चढ़े नवला
1: हिंद वाणी सब भूल जाती है महलन में जब आए
0: गुजरी नारी नहीं पहचानी गुजरी नारी नहीं पहचानी हाथ कटारी लाओ हाथ कटारी लाओ बादशाह हाथ कटारी लाओ किसे डरे तू बड़ा बादशाह गुजरी से क्यों डरे मोहलन में तुझ आए गुर्जरी इससे तू क्या डरे जैसी नाची मात काल का वैसी नाचू का मारू तमाचा उड़ जाए पगड़ी मुखड़ा हो जाए लाल नारी रूप की जोत न देखी ज्वाला जैसी जले जोर जुल्म से हाथ लगाया खाक मुल्क खाक मुल्क
1: बेहोश हो गई वाह वाह क्या हुस्न है क्या हुस्न है क्या हुस्न है

0: अरे चंदाजी नु घर क्या छे, हीराजी क्या छे, केम कोई बोलता नथी, केम कोई जवाब आता नथी। अल्लाह लड़वानी वातो करो छो, अने लड़वानु आयु छे तेरी तो कोई बात सांभळता नथी। हीराजी क्या छे?
1: हूँ आ रहो, मारू शू काम छे?
0: अल्लाह तारू शू काम छे? तारी भाभी कैद मां पड़ी।
1: हैं? मारी भाभी कैद मां पड़ी? कौन है कैद करी?
0: बादशाह है। तारी भाभी ये मारी जोड़े आ संदेशों के